अष्टर अष्टर थागांदा पतात उच्छिले इनोता अश्वन कोरवता बलहिं पेन कोरुद्धारान इरकागवे अला चलखिं बलवीगत थनारे तत्रान बैरेंजवेन